0: Breaker Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: Safo Travel, at all protected.
3: LemFi means quicker and safe way to send money.
4: LemFi means low transaction fees and great exchange rates.
3: LemFi means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LIKER.
4: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LemFi. Download the LEMFI mobile app today.
5: LemFi is registered by the FCA. T's and C's apply.
6: Apne business ko UK ke लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 01164710697 या ईमेल करें sales@lykamedia.co.uk।
0: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Lyca Radio.

गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लय फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा दूर।

मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष घरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे।

मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहावे।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भाव।

तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है भी हो स

0: your music for a super hot summertime on the Leica Radio Network.
1: Hey! तुमने कभी किसी से प्यार किया?
2: किया!
1: कभी किसी को

0: Mamster Pani Puri or Pani Puri Ka Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: ये बवाल इस बॉस के ऊपर जाएगा भाई।
3: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है।
4: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो।
5: भाई निकाल माइक।
6: भाई माइक के प्यार कितना सुंदर।
1: The brand new reality TV show Bhojpuri Bawal, Monday to Sunday at 10 PM on Colors TV.
7: आई है फिर से happy वाली feeling लेके दिवाली।
8: It's back. And it's bigger.
1: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
8: On Sunday, 1st November 2026 at the Ramgarhia Centre.
1: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
8: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
9: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. What's Up Plus? Become star.

0: Breaker Radio. This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
1: I hope Major Nena hum log waqt par pahunche.
0: Get ready, UK. Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
2: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
0: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
0: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
3: Function rakha hua hai.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.

0: मजेदार फ्लेवर्स
1: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जर्मन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
2: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मां भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मां दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मां जोड़ाओ अपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो डिपार्चर 5 सप्टेम्बर ना मंत्रा हॉलिडेज कॉल करो 0203-773-6333 Mantra Holidays. What's your travel mantra?
3: I happen to happy Wali feeling like a Diwali.
4: It's back and it's bigger.
5: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
4: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
5: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit DiwaliShoppingFestival.co.uk.
4: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
5: Creative Team Events and Peace Nation UK brings to you the King of Sufi Music, Lakhvinder Vidali, to London and Birmingham. This October, for sponsorship inquiries, call 07959-250376.
6: Leica Radio launches Birmingham-wide on DAB from September 1st.

0: Breakfast with Deep Roger.
1: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 50th of August every Saturday and Sunday at 7 p.m. on Colours TV.
2: I hope we will reach the time we
3: लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर प्ले बैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का Perfect Destination राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी Falcon Stores पर ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं Falcon Snacks 300 grams की फुल रेंज सिर्फ £1.99 each मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ £13.49 सुहाना खमन ठोकला 500 grams सिर्फ £1.99 each या 2 for £2.99 टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ £29.96 एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99p से शुरू और हर्ज़मैन बटर Key 20 kg still 10.99.
6: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE12JU and 2A Rollout Cell Leicester LE54UN.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Start.

0: और इस गाने में खयाम साहब ने भी कमाल किया है, किशोर कुमार और लता जी ने किया गाया है। त्रिशूल फिल्म से लिया था ये गाना, और उससे पहले सुहाग फिल्म का गीत जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कमाल किया और एक सुपरहिट गाना हम सबको दिया। और लीजिए दो बैक टू बैक गीतों के साथ आज के द ऋतु शर्मा शो की शुरुआत हो गई है, और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद लाइका रेडियो नेटवर्क, जो है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड मिडलैंड्स, और जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और मुझे उम्मीद है कि इस पूरा हफ्ता आप बहुत खुश रहे होंगे, अच्छे से बीता होगा और मेरा भी इंतजार किया होगा, है ना। चलिए, किया हो या नहीं किया हो, फिलहाल तो हमारा और आपका साथ शुरू हो गया है। 3 घंटे तक मैं यही रहने वाली हूँ आपके साथ, और एक नहीं दो नहीं ढेर सारे गाने भी सुनवाने वाली हूँ। इसके अलावा शो में जो भी कुछ होता है आज भी होगा, लेकिन आपको बस मेरा साथ देना होगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो अगला गीत बजाने से पहले आपको बता दें कि 1 pound आज आपको देगा 128 भारतीय रुपए, लेकिन ये ट्रांसफर करवाएंगे आप via SBI branch online by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions भी अप्लाई होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit SBIUK.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega Blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
4: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500 pounds, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
5: Smash hit run in 2025, Surrenderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting Desi twist.
6: Be sure to catch the show across the Midlands. The Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July. And at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
5: Click Rifko Theatre .com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.
7: Lester Miller is back
8: and the stage is about to explode. Confirmed artist
7: Shin DCS. Expect classic vibes, live energy and a proper celebration at the Abbey Park.
8: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
7: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
8: Arts Council England.

0: लीजिए ये गाना मेरी ओर से आप सभी के नाम पर जाता है, माय फेवरेट उदित नारायण और साथ में थी पूर्णिमा। करिश्मा कपूर और हीरो नंबर वन गोविंदा की फिल्म से लिया था हमने ये गाना। और सुनने में आया कि आजकल हीरो नंबर वन यानी कि गोविंदा यही लंदन में घूम रहे हैं, तो आपको कहीं मिले क्या? अपनी नजरें जरा इधर उधर घुमाते रहिए, हो सकता है आपको घूमते हुए मिल जाए। लेकिन मैं तो मिल चुकी हूँ, इसलिए मैं भी आजकल, वैसे आपको बताऊँ, पूरे हफ्ते बहुत बिजी रही। हमारे शेखर जी पूछ रहे हैं कि आपने हमसे तो पूछ लिया कि पूरे हफ्ते हमने क्या किया, लेकिन अपना तो बताया ही नहीं। तो मैं बता रही हूँ, मैं भी बहुत बिजी रही। मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, चारों दिन मैंने इतना ट्रैवल किया है और बहुत सारे काम खत्म किए हैं जो काफी दिनों से लटके पड़े थे। लेकिन मुझे गोविंदा कहीं नहीं मिले, हाँ मुझे नहीं मिले। लेकिन चलिए आप ध्यान से घूमते रहिए और इधर उधर नजरें घुमाते रहिए, शायद आपको मिल जाए। ये गाना बड़ा ही सुंदर था जिसे आप सबने पसंद किया है और आपके ढेरों मैसेजेस मुझे मिल चुके हैं। हमारी आंटी जी कहती हैं, क्या बात है, मैंने जैसी रेडियो खोला अमिताभ बच्चन का गाना आ रहा था और आप अमिताभ बच्चन की फैन है, तो ये कह दूं आपका तो दिन बन गया है ना। आपने कहा नहीं लेकिन मैंने कह दिया। चलिए दोनों गाने हमने आपके नाम पर किए। और इसके अलावा हमारे राजेश जी का कहना है कि बाहर कितनी गर्मी है अंदर कितनी सर्दी है, मतलब ये गाने की ये लाइन मेरे लिए बहुत सूटेबल है। बाहर वाकई में गर्मी है लेकिन अंदर यहाँ एसी चल रहा है। लेकिन आपका कहना है कि बाहर की गर्मी को मिटाने के लिए, बादलों को बुलाने के लिए क्यों ना हम कोई यज्ञ करें, मंत्रोच्चार करें। सही कह रहे हैं राजेश जी, कुछ करना चाहिए। बादल तो जैसे हमसे रूठ ही गए हैं, इतने दिनों से शक्ल ही नहीं दिखाई, जो आए दिन हमारे ऊपर छाए रहते थे, जिन्हें देखकर हम बोर हो जाते थे, पता नहीं कहाँ रूठ कर चले गए हैं और अब अगली बारिश यहाँ कब होगी। सभी को बेसब्री से इसका इंतजार है, लेकिन आप हमारा साथ दे रहे हैं ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू, साथ देते रहिए। थैंक यू मौसमा जी, महेंद्र पटेल जी, हरीश खत्री जी, मिसेस पेके चियांग, जैस्मीन, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। थैंक यू मिस्टर केश नाथवानी जी, आप साथ दे रहे हैं, और थैंक यू आप सभी के मैसेजेस के लिए। लेकिन हिमांशु पटेल जी धन्यवाद, निर्मला जी, जासू जी, अरुणा जी, तोची जी, मृदु जी, और ये कौन है, यस ये है हमारे नसीर अहमद जी, पोर्चुगल में प्रोग्राम सुन रहे हैं। और इसके अलावा ये मैसेज आया है, लिखते हैं प्लीज थैंक्स ऑसम, अरे सारे आपने स्माइलीज बनाकर लिख दिया है और कुछ लिखा ही नहीं है, बस ये लिख रहे हैं फ्रॉम मी सोफी सनी स्कॉटलैंड। ऐसे लग रहा है जैसे स्कॉटलैंड में सनी वेदर है, अब सनी है, गीतों को एंजॉय कर रहे हैं। चलिए ये गाना जो था मैंने आप ही को डेडिकेट किया। और इसके अलावा हमारे विजय गुडूरी जी ने हमेशा की तरह एक बड़ी ही सुंदर सी बात हमारे साथ शेयर की है और कहते हैं कि वक्त चाहे कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, ईश्वर का धन्यवाद करना मत भूलिए, क्योंकि अच्छा वक्त हमें खुशी देता है और बुरा वक्त हमें मजबूत बनाता है।
1: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Leica Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: तो चलिए आपसे इतनी सारी बातें हो गई तो क्यों नाग लगाना आप ही के नाम किया जाए। मीरा जी, प्रकाश सुधार जी नॉर्थ हॉल से, निर्मला जी थैंक यू आपके मैसेजेस के लिए, महेंद्र बाजारिया जी थैंक यू, ये गीत लता जी की आवाज में मेरी ओर से आप सबके लिए।

0: राजकुमार फिल्म का ये गाना आप में से ज्यादातर साथियों ने पसंद किया है। शंकर जयकिशन का म्यूजिक और पृथ्वीराज कपूर, शम्मी कपूर और साधना की फिल्म, और इस गाने में साधना जी बहुत ही खूबसूरत लगी हैं। वैसे तो हर फिल्म में खूबसूरत लगी हैं और उनके बहुत सारे फैंस उस जमाने में भी थे और आज भी हैं, लेकिन इस गाने में जो उनका लुक है उसकी बात ही कुछ और है। और जिन्हें ये गाना पसंद है, हम ये गाना उन्हीं को डेडिकेट कर देते हैं। विनोद जी कहते हैं कि मुझे तो ये गाना बहुत अच्छा लगता है ऋतु, तो चलिए विनोद जी, हमने इसे आपके नाम पर किया।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
0: तो चलिए इस गाने को सुनकर हमारे मांशु पटेल जी भी कहते हैं कि ये मूवी आपने जामनगर में देखी थी जब आप सिर्फ 14 इयर्स के थे। देखिए कितना समय बीत गया, लेकिन गाना आज भी कितना मधुर लगता है। और इसीलिए तो इन गानों को सुनकर अमिताभ बच्चन भी कहते हैं कि इन गानों को, ये जो सिंगर्स हैं, इनके लिए म्यूजिक की जरूरत वैसे थी नहीं, इनकी आवाज में ही इतनी खूबसूरती, इतनी लय सुर ताल थी कि अगर आप इन आवाजों को बिना म्यूजिक के भी सुने ना, तो भी ये उतने ही सुंदर सुनाई देंगे। आपने आजकल के गाने सुने होंगे जिसमें सिंगर की आवाज तो होती है लेकिन म्यूजिक आवाज से ज्यादा लाउड होता है, लेकिन अगर इन गीतों को सुना जाए तो इसमें म्यूजिक भी बसता है लेकिन सिंगर की आवाज अलग ही उभर कर सुनाई देती है, और जिसमें जो मधुरता है उसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। आगे बढ़ जाती हूँ और आगे बढ़कर थैंक यू कहना चाहती हूँ मीरा जी को। हमारी मीरा जी कहती है, ऋतु मैं लंदन आ रही हूँ, हो सकता है मुझे गोविंदा मिल जाए। अरे बिल्कुल हो सकता है, उम्मीद नहीं छोड़ना, बस आप जब घूमे ना लंदन की सड़कों पर तो कबूतर की तरह अपनी गर्दन चारों तरफ घुमाते रहिए, हो सकता है आपको दिख जाए गोविंदा। मैं कहूंगी आपको मिल जाए, लंदन आना सफल हो जाए अगर आप उनके फैन है तो। थैंक यू रूपसाही जी, आपका मैसेज बहुत लंबा है जिसे जरूर पढ़ूंगी। थैंक यू प्रज्ञा, आप भी आ गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुशरण जी, और ये मैसेज जासू जी आपका भी धन्यवाद। एक और मैसेज था जिसे मैं पढ़ना चाह रही थी। यस, हमारे नरेंद्र बागिया जी ने लिखा है कि कहते हैं रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो हरदम जीने का क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता रहता है। और वक्त की ये सबसे अच्छी बात है कि अच्छा हो तब तो कट ही जाता है लेकिन बुरा भी हो तो भी गुजर जाता है, वक्त कभी कहीं पर भी किसी के लिए रुकता नहीं है।
1: ये है Leica Radio. Across the Leica Radio network, this is Ritu Sharma. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: तो हॉलीडे जाने के बारे में सोच रहे हैं तो साउथॉल ट्रैवल को कॉल कर लीजिए, उनके पास दुबई के लिए बहुत अच्छी डील्स है। आप उन्हें फोन कीजिए ऑन 0208-574-8410 पर, और ये सब है टोल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is Ritu Sharma.
2: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Amantrika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
3: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses
6: and Villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy.
9: Siddhayu, now available at Deepak Foods Thornton Heath.

0: Mamster Pani Puri or Pani Puri Ka Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's, and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
3: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
4: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में.
3: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक सा गाना जिसे लिया था फिल्म बड़े दिल वाला फिल्म से, आर डी बर्मन का म्यूजिक और ऋषि कपूर और टीना अंबानी की फिल्म। और आपको बता दूं कि आज ऐसे ही और भी बहुत सारे रोमांटिक गाने आप सुनेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में यादें में, क्योंकि आज ऋषि कपूर की पत्नी यानी कि नीतू सिंह का हैप्पी वाला बर्थडे है। यस, तो आज की यादें में नीतू सिंह को याद करेंगे और उनके बहुत ही चुने हुए गाने मैं आपको सुनवाऊंगी। लेकिन उससे पहले गिरीश जी, आपको थैंक यू कहते चले, ये गाना आपके नाम किया, आप भारत में हमें सुन रहे हैं और आप कहते हैं कि हमने आपका कल भी इंतजार किया था क्योंकि दो फ्राइडे से मैं यहाँ आ रही थी, लेकिन क्या किया जाए, आज मेरा शो है तो आज मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आपने इंतजार किया, थैंक यू सो मच। जब भी मौका मिलेगा मैं जरूर आऊंगी, लेकिन फिलहाल तो आज आपके साथ हूँ और आप मेरा साथ दे रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या है। ये गीत मैं आपको ही डेडिकेट करती हूँ और आपके साथ साथ अर्जुन जी, संतोष जी हैरो से, अनिल सोनी जी वियाना से, थैंक यू राजकुमार जी, थैंक यू अलका जी एंड फरजाना जी, एंड ऑफकोर्स हमारे भरत गंगा राम जी, सुरजीत जी, आप सभी का स्वागत है शो।
1: हेलो हेलो हेलो, वेक अप विद मी काजल ऑन द ब्रेकफास्ट शो वेयर आई टेक यू डाउन मेमोरी लेन, गेट इंस्पायर्ड बाय मॉर्निंग मंत्रा, मंडे टू फ्राइडे 6 AM टू 10 AM, लाइक अ गोल्ड एंड लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 128 भारतीय रुपए, 374 पाकिस्तानी रुपए and 166 Bangladeshi takas.
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: The gold rate is 103.57 pounds per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
3: Leica Radio.
2: Leica Radio.
4: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
5: I hope Major Naina, hum log waqt par pahunche.
6: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का perfect destination. Rakhi और Ganesh Idols अब available हैं सभी Falcon stores पर. Onam संध्या के लिए pre-bookings भी शुरू हो चुकी हैं. Falcon Snacks 300 grams की full range सिर्फ £1.99 each. Mustafa Dehraduni Rice 20 LBS सिर्फ £13.49. Suhana Khaman Thokla 500 grams सिर्फ £1.99 each या 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kg सिर्फ £29.96. S Motiram Namkeen अब सिर्फ 99p से शुरू. और Herdsman बटर घी 20 kg सिर्फ £10.99.
7: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE5 4UN.
4: One performer. Countless personalities. A whole universe of entertainment.
8: Sunil Grover live UK tour 2026.
4: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
8: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
4: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
8: Supporting mental health and well-being. Being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
4: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
9: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan. Locate, design, manage, cater.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
11: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020.
12: 01484-9963-5757. Greens by Danube. Prime location,
13: high appreciation
12: in Dubai.
14: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
15: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
14: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
16: I happen to happy wali feeling.
17: It's back and it's bigger.
18: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
17: On Sunday, 1st November 2026 at the Ramgarhia Centre.
18: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
17: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
19: कुछ शामें कैलेंडर में नहीं, दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट। Saturday the 5th of September at the Platinum Suite Leicester. Apni seats aaj hi reserve kijiye. For more information call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner Leica Radio Network.
20: You're both on the same road. Same tarmac, same rules. Just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way. They're on their way, just like you. So use your mirrors. Check before you manoeuvre, and be aware of motorbikes, because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
21: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over, to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
22: The Ritu Sharma Show, featuring classics non-stop with Ritu Sharma on Leica Radio.

0: कभी कभी फिल्म का ये रोमांटिक सा गाना जिसमें ऋषि कपूर के साथ थी नीतू सिंह और आज नीतू सिंह अपनी हैप्पी वाली बर्थडे मना रही हैं। 8 जुलाई 1958 में बॉर्न नीतू सिंह आज 68 इयर्स की हो गई हैं और हम सब जानते हैं कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी मानी बड़ी ही पॉपुलर खूबसूरत हीरोइन रही हैं जिन्होंने 1970s से लेकर 1980s के दौर में बहुत सारी फिल्मों में काम किया और उन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन सिर्फ 22 साल की उम्र में, जिस उम्र में कुछ हीरोइंस अपना करियर स्टार्ट करती हैं, ढेर सारी फिल्मों में काम करने के बाद घर बसाकर बॉलीवुड इंडस्ट्री को बाय बाय कह दिया और इस छोटे से समय में ही उन्होंने कई यादगार फिल्में की हैं जिनके की गीत मैं आज आपको सुनवाने वाली हूँ। दो बैक टू बैक गीत आप सुन चुके हैं, ऐसा ही एक और खूबसूरत गीत आने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नीतू सिंह उनका असली नाम नहीं है, असली नाम उनका है सोनिया सिंह और आज ही के दिन दिल्ली के एक सिख परिवार में पैदा हुई थी और तभी तो ऋषि कपूर कहते थे कि जब इस सिखनी से मेरी आंख लगी तो फिर इसके बिना रहा नहीं जाता था। और सोनिया सिंह जो कि नीतू सिंह का बचपन का नाम है, बचपन में वो इसी नाम से जानी जाती थी, उन्होंने सिर्फ 8 साल की उम्र में सूरज फिल्म में बेबी सोनिया के रूप में काम किया था। उनकी एक और फिल्म आई थी दो कलियां बच्चे मन के सच्चे, गीत आपने सुना होगा 1968 में, जिसमें वो डबल रोल में थी, काफी पसंद किया गया था। लेकिन उसके बाद एज ए हीरोइन उन्होंने रिक्शा वाला फिल्म से अपना डेब्यू किया और उसके बाद तो जब यादों की बारात का वो गाना आया ना, लेकर हम दीवाना दिल, बहुत बड़ा हिट हुआ ये गाना और इस गाने से नीतू सिंह रातों रात स्टार बन गई। हालांकि इस फिल्म में इनका सिर्फ एक ये गाना ही था, लेकिन उसके बाद फिल्मों की एक के बाद एक लाइन लग गई और आपने देखा ही है कि कितनी खूबसूरत फिल्मों का हिस्सा रही है। ऐसा ही एक और बहुत सुंदर सा गीत मैं आपको सुनवाने वाली हूँ अब से बस थोड़ी ही देर में, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं यादें में नीतू सिंह की।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 128 भारतीय रुपए और याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions भी apply होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Ye hai Laika Radio. Laika Radio. This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM. Get ready, UK. Snill Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions. Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS. For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
3: Band in the function, Lakawa. Start tour.

0: अनिल धवन के साथ। और ये फिल्म कैसी थी इस बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये गाना बहुत ही खूबसूरत था मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, आप सभी का फेवरेट। और आज हम यादें में याद कर रहे हैं नीतू सिंह को, क्योंकि आज है उनका बर्थडे।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: वैसे आज ही नीतू सिंह के बारे में बात कर रही हूँ, एक और बहुत सुंदर सा गीत आने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि नीतू सिंह और ऋषि कपूर ने शादी तो जरूर की है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें पहले ऋषि कपूर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि ऋषि कपूर सेट पर बहुत शरारती थे, नीतू सिंह को बहुत परेशान किया करते थे, कभी उनके चेहरे पर काजल बिगाड़ देते थे, कभी कोई उनके साथ प्रैंक करते थे और वो इतनी परेशान हो जाती थी कि सेट पर रोने लगती थी। लेकिन धीरे धीरे यही नोक झोंक प्यार में बदल गई, इतना प्यार हो गया कि ऐसे भी किस्से मैंने सुने हैं कि जब नीतू सिंह शूटिंग करने जाती थी जहाँ ऋषि कपूर नहीं होते थे, तो या तो ऋषि कपूर अपनी शूटिंग खत्म करके नीतू सिंह के सेट पर आ जाते थे, या फिर नीतू सिंह जल्दी जल्दी अपना सीन खत्म करके ऋषि कपूर के पास पहुंच जाती थी। भाई ये उनका पहला प्यार जो था, बाद में दोनों ने शादी भी रचाई और बॉलीवुड की सबसे रोमांटिक ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन जोड़ीज में उनका नाम मुझे लगता है शायद टॉप पर आएगा।
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से लिया था ये गाना। और आज की यादें में हम याद कर रहे हैं नीतू सिंह को। एक और उनकी फिल्म का बड़ा ही सुंदर सा गीत मैं आपको सुनवाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले
1: दिस इज रितु शर्मा। बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड, रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट्स।
0: तो आपको बता दें कि इस बार के लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ चुका है और इसका टाइटल है इज एस्ट्रोलॉजी रियल और ए ट्रैप, जिसे होस्ट किया है खुश ने। और आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट सुन सकते हैं स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर, गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is Leica Radio.
2: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का perfect destination. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी Falcon स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग भी शुरू हो चुकी हैं। Falcon स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ £1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ £29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू और हर्जमन बटर घी 20 kg सिर्फ £10.99।
3: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लेस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लेस्टर LE5 4UN।
4: After the smash hit run in 2025, Surrenderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting Desi twist.
5: Be sure to catch the show across the Midlands, the Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July, and at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
4: Click rifkotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
9: Leicester Miller is back
10: and the stage

0: their energy and those proper live stage vibes.
1: Hosted by the team of Lyco Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
0: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council,
1: Arts Council England.
2: Khakra Crunch Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
3: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
2: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
4: Dard se purana rishta hai mera.
5: The wait is over. Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic, Awara Pan 2.
4: Usne mujhe chua, par apnaya nahi. To phir
5: releasing in cinemas on August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
6: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ अपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
7: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
8: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
9: बहुत पढ़ाई किया है ना तूने तो एक सवाल का जवाब दे
10: पूछ ही लो सर
9: साल के कितने महीने में 28 दिन होते हैं
10: फरवरी सर
11: सर साल के हर महीने में 28 दिन होते हैं
12: इंडिया के टॉप 1% स्टार्ट्स दिस सितंबर ऑन स्टार प्लस
9: इंडिया के टॉप 1% सिर्फ डिग्री नहीं दिमाग भी जीतेगा
7: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. The Leica Radio Network. The perfect soundtrack for a British summer heatwave.

0: नीतू सिंह ने अपने जमाने के सारे सुपरस्टार्स के साथ काम किया है। हालांकि बाद में शशि कपूर उनके रिश्तेदार हो गए, रणधीर कपूर उनके रिश्तेदार हो गए, क्योंकि उन्होंने ऋषि कपूर से शादी रचा ली। लेकिन छोटी सी उम्र में बड़े बड़े हीरो के साथ उन्होंने खूब अच्छी अच्छी फिल्में की। और जब नीतू सिंह से पूछा गया कि इतनी जल्दी फिल्में आपने करना क्यों छोड़ दिया, 22 साल की कोई उम्र होती है फिल्मों से बाय-बाय कहने के लिए, लेकिन नीतू कपूर का कहना था कि 14 साल से लेकर 22 साल तक मैंने इतना काम कर लिया था कि मुझे आज भी ये कमी महसूस नहीं होती कि मैंने फिल्मों को जल्दी बाय बाय कह दिया। अच्छी बात है। आपको बता दें कि आज की यादें में हम नीतू सिंह को याद कर रहे हैं, जिनकी बर्थडे आती है जुलाई में, 8 जुलाई को इनकी बर्थडे आती है, और आज हम इन्हें याद कर रहे हैं। एक और इनका बहुत ही खूबसूरत सा गाना मैं आपको सुनवाने वाली हूँ, जिसका आप सभी को इंतजार है। चलिए बजाते हैं आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 374 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टका।
2: Like radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: So Gold Rate is 103.57 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: LIKA Radio.
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: लीजिए, आज की यादें में हम नीतू सिंह को याद कर रहे हैं और मोहम्मद अयूब चौहान कहते हैं ये गाना मेरे नाम कीजिए आपके साथ साथ, सभी लिसनर्स जो साथ दे रहे हैं उनके नाम जाता है। एंड रमा व्यास जी, आपने नीतू सिंह के साथ एक बहुत ही प्यारी सी पिक्चर शेयर की है और आपने लिखा है कि वो 1975 में आपके घर आई थी। क्यों, घर क्यों आई थी? आपकी उनसे रिश्तेदारी है क्या? जरूर बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि नीतू सिंह आज भी बहुत फिट हैं और फिल्मों में आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उनकी एक फिल्म आई थी, दादी की शादी, देखी है आप में से किसी ने? मैंने नहीं देखी, लेकिन नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और आजकल बड़ी ही फिट हो गई हैं। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखती हैं, योगा वोगा करती हैं और 68 ईयर्स की तो कहीं से भी नहीं लगती हैं। आज हमने उनको याद किया, उनके कुछ गाने आपको सुनवाए। एक और ऐसा ही गाना जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था, सुनवाती हूँ बस अब से, बस थोड़ी ही देर में।
1: ये है Like a Radio. This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
2: I hope Major Naina hum log waqt par pahunche.
3: Leicester, tayar ho jao ek yaadgar Bollywood night ke liye. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor. Playback singer Aman Trika. Or female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: लीजिए, ये था गाना राम बलराम फिल्म से लिया हुआ, हमसे भूल हो गई हमका माफी दे दो। लेकिन ये दो शब्द, दो लाइन बोलने में कई लोगों को इतनी तकलीफ होती है कि वो बस कुछ भी बोल लेंगे लेकिन ये दो शब्द नहीं भूलेंगे, पता नहीं क्या है। एनीवेज, गाना बहुत ही सुंदर था, बड़े दिनों बाद प्रोग्राम में शामिल किया। और उससे पहले इंतहा मैं नहीं गाऊंगी, हो गई इंतजार की शराबी फिल्म का गीत जिसे आप सबने पसंद किया है। और मालती जी कहती हैं कि तुम आपने वो गाना बजाया ना तुमसे दूर रह के, आ मजा आ गया, आपका फेवरेट गीत है। चलिए मालती जी, मैंने ये गाना आपको डेडिकेट किया। इसके अलावा रितेश कहते हैं ऋतु कितने अच्छे गाने बजा रही हो, आई थैंक यू, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू निर्मला जी हमारा साथ देने के लिए, थैंक यू जासू जी, दिनेश सॉरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा जितने भी साथी सुन रहे हैं सभी का स्वागत। एंड विजय जी आपने एक जोक हमारे साथ शेयर किया और कहते हैं कि लड़की कहती है अपने पति से अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो पति कहता है पर तुम तो कहती थी कि मैं तुम्हारे सपनों का राजा हूं, तो पत्नी कहती हाँ वही तो अब मैं जाग गई हूं। अच्छी बात है, नाइस जोक। और अब बात कर लेते हैं आज के थ्री वर्ड्स गेम की। तैयार हैं आप सब? जिन्हें नहीं पता है कि ये थ्री वर्ड्स क्या होता है तो बता देती हूँ कि बॉलीवुड के किसी एक गाने से जो शुरू की तीन चार लाइंस होती हैं वहां से मैं दो तीन वर्ड्स उठाती हूँ और आपको उन वर्ड्स की हेल्प से पहचानना होता है कि गाना कौन सा है। तो पहला वर्ड है आज का मोहब्बत, दूसरा है नजारा और तीसरा है सहारा। ये फिल्म 1963 में आई थी, लता मंगेशकर की आवाज है और नौशाद का म्यूजिक है, गाना बड़ा ही मशहूर है। कौन सा गाना है ये, कुछ समझ आया? अगर आया तो देर किस बात की है, भिजवाइए ना अपना मैसेज हमारे इस नंबर पर।
1: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404-793-719।
0: चलिए वर्ड्स एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, मोहब्बत, नजारा और सहारा। 1963 की फिल्म है, लता मंगेशकर की आवाज है और नौशाद का म्यूजिक है, कौन सा है ये गाना?
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: जब तक आप सोचिए मैं आपको बताती हूँ कि आज ये 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 128 भारतीय रुपए। और ये ट्रांसफर हमेशा की तरह आपको करवाना होगा via SBI ब्रांच ऑनलाइन और by using the Yono SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी लागू रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. Leica Radio.
2: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
4: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy.
2: Siddhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham.
4: Siddhayu, Ayurved that fits your life.
5: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look

0: क्या प्यारा गाना लिखा है हसरत जयपुरी ने और क्या म्यूजिक बनाया है शंकर जयकिशन ने. आई जस्ट लव दिस सॉन्ग. और ये फिल्म अप्रैल फूल थी जिसमें विश्वजीत और सायरा बानू ने काम किया था. और आपको अब तक तो पता चल ही गया है कि विश्वजीत ही है हमारे इस बार के आर्टिस्ट ऑफ द वीक. और इस गाने के बाद अब सिलसिला शुरू करते हैं आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक का. सुनवाते हैं आपको पहला गाना. लेकिन आपको ये बता दूं कि आज बड़ा भारी कंफ्यूजन है. आज आपने बहुत सारे गाने बताए हैं लेकिन कुछ साथियों ने सही गाने भी बताए हैं लेकिन ज्यादातर ने इसे एक गाने के साथ जोड़ दिया है. कुछ कहते हैं मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, क्योंकि इसमें मोहब्बत और सहारा भी है. लेकिन आप ईयर को देखिए और म्यूजिक डायरेक्टर को भी देखिए, फिर आप सोचिए कि इन तीन वर्ड्स पे कौन सा गाना हो सकता है. ये मैंने आपको हिंट दिया है. और नहीं तो जिन्होंने सही जवाब दिए उनको मैं उनके नाम भी बताऊंगी, गाना तो सबको सुनवाऊंगी. लेकिन फिलहाल शुरू कर रही हूँ आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक का सिलसिला. सुनवाते हैं आपको पहला गाना.
1: ये है Leica Radio. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DerryValley.net.

0: क्या धुन बनाई है। अगर नाग भी इस धुन को सुन ले तो आई एम श्योर वो भी झूमने लगेंगे। और क्या धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने 1959 की फिल्म से लिया था ये गाना, जिसमें रंजन चित्रा जयश्री गढ़कर ने काम किया था। और ये था हमारे आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक का पहला गाना। और बहुत सारे साथियों ने सही जवाब दे दिया है, और जिन्होंने सही जवाब दे दिया है मैं उनके नाम जरूर बताऊंगी, लेकिन पहले
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 90s के बॉलीवुड लेजेंड उदित नारायण परफॉर्म करने जा रहे हैं अपने बेटे आदित्य नारायण के साथ एट ओवो अरीना वैमली में ऑन संडे 20th December। टिकट्स अवेलेबल हैं फ्रॉम टिकट मास्टर एंड AXS पर। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है इसके लाइका रेडियो नेटवर्क। और अगर आपने टिकट्स बुक नहीं कराए हैं तो जल्दी कीजिए, अपने टिकट्स आज ही बुक कीजिए।
1: The Ritu Sharma Show on Leica Radio. Leica Radio.
0: हाँ जी, तो बात कर लेते हैं आज के थ्री वर्स गेम वाले गाने की। एक्चुअली ये गाना उस फिल्म में रफी साहब ने भी गाया है, लेकिन मैंने जो गाना चूज किया है उसमें लता जी की आवाज है। तो ये भी एक बड़ा क्लू है, अगर आप चाहें तो गैस कर सकते हैं, वरना परेशान होने की जरूरत है नहीं। ये सिर्फ हम फन के लिए खेलते हैं, आपको परेशान करने के लिए नहीं। थोड़ी ही देर में बजाऊंगी कि वो गाना कौन सा है, लेकिन जिन्होंने सही जवाब दिया है उनके नाम भी बताऊंगी, पर पहले सुनवाऊंगी आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना।
1: दिस इज रितु शर्मा।
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with

0: जी हाँ बिल्कुल, ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना, जिसे लिया था फिल्म नया दौर से। और अब बात करते हैं आज के थ्री वर्स गेम वाले गाने की। बहुत सारे साथियों ने कहा है कि मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। बिल्कुल, इसमें मोहब्बत भी है, सहारा भी है, लेकिन नजारा नहीं है। और इसके म्यूजिक डायरेक्टर आई थिंक लक्ष्मीकांत प्यारे लाल है, और मैंने जो गाना बताया है उसके म्यूजिक डायरेक्टर है नौशाद। तो गाना कौन सा है, चलिए सुनवाती हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिए। लेकिन जिन्होंने सही जवाब दिया है उनके नाम है उल्लास, महेंद्र बाजारिया जी, मितुल पटेल, दिव्या जी, आभा शर्मा, जय भट्ट, कुकी हाजरा, करसन पिंडोरिया, विजय गुडोरी जी, गीता एंड हर्ष जोशी जी, रजनीश, अयुब चौहान, तोची पनेसर, अर्जुन जी एंड गिरीश जी फ्रॉम इंडिया। आप सबने सही पहचाना है। और अब सुनवाती हूँ आपसे बस थोड़ी ही देर में आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का वो ना, आज के थ्री वर्स गेम का वो गाना।
1: Holiday breaks are brought to you by South Hall Travel.
0: लेकिन उससे पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर आप हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो साउथ हॉल ट्रैवल को कॉल कीजिए। दुबई के लिए बहुत अच्छी डील चल रही है, उन्हें फोन कीजिए 0208-574-8410 पर। सब कुछ एट ऑल प्रोटेक्टेड भी है।
1: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Leica Radio.
2: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 से शुरू। और हर्जमैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
3: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN।
4: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit Ambala. Ambala.co.uk.
5: South of Travel, 7 days a week. South of Travel, 24 hours a day. We're at our peak.
6: South Hall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
5: South Hall Travel.
6: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
5: South Hall Travel can take you there.
7: South Hall Travel, at all protected.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just 700 and £11,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester. With grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favorites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
11: The wait is over. Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic, Avarapan 2.
12: Usse mujhe chua, par apnaya nahi.
11: Releasing in cinemas on August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
13: Mega blockbuster Durandar. Mega blockbuster Durandar, 15th and 16th of August at 9 PM on Utsav Gold. Title sponsor Watchdog Security. Associate sponsor Lemfi.
14: happen to happy valley feeling like a Diwali.
15: It's back and it's bigger.
16: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
15: On Sunday, 1st November 2026 at the Ramgarhia Centre.
16: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
15: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
17: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
18: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
17: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
19: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: देखो, ये गाना हमने मेरे महबूब फिल्म से लिया था, जिसमें लता जी की आवाज थी, और इस फिल्म में इस गीत को रफी साहब ने भी गाया है। वत्सला जी कहती हैं कि ये गाना सुनाकर आपने तो मेरा दिन बना दिया। तो चलिए, जिनका भी फेवरेट गीत था, ये गाना उन सभी के नाम पर जाता है। और ये था हमारे आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, गुडनेस इन एवरी बाइट, ट्राई इट टुडे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
2: ये है लाइका रेडियो।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 374 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
3: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: The gold rate is 103.57 pounds per gram.
3: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
0: तो लीजिए, अब जाने की बेला आ गई है। और जाते जाते गिरीश जी, यानी सोनी जी, कीर्ति जी, जैस्मीन जी, जासू जी, वत्सला जी, कीर्ति जी, भारती जी और हमारे जितने भी साथी साथ दे रहे हैं, जिन्होंने सुबह से लेकर अब तक मेरा साथ दिया है, सभी का थैंक यू। मेरे बाद इस शो में गनुराग आपका साथ देंगे लाइका रेडियो गोल्ड पर, लाइका गोल्ड पर। लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर होंगी आपके साथ फजीला, और लाइका रेडियो मिलन्स पर आनंदी आपका साथ देंगी। लेकिन कल होगी हमारी आपकी फिर से मुलाकात। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मिलते हैं कल आपसे।
2: Bye-bye.
4: Leica Radio. This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 50th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
5: I hope Major Naina, hum log waqt par pahunche.
6: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika, or female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
7: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
8: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं, जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500 पाउंड, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
9: वेडिंग्स, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
10: आर यू रेडी टू एम्बार्क ऑन द जर्नी ऑफ अ लाइफटाइम? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116-266-6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी.
1: Sounding better than ever in the sunshine.

0: Book now, visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist.
2: Be sure to catch the show across the Midlands. The Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July. And at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
1: Click Rifko Theatre. .com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410 दैट्स 8574-8410
4: साउथ हॉल ट्रेवल एट होम प्रोटेक्टेड
5: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
6: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
5: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
7: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन
8: Leicester Mella is back.
9: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
8: Roach Killer. Get ready for big tunes, big vibes and a massive live performance.
9: Hosted by the team of Lyco Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
8: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
9: Arts Council England.
10: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
11: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
12: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: मोहम्मद अजीज की आवाज में गाया हुआ ये गीत था फ्रॉम द फिल्म निगाहें, निगाहें या नगीना, नगीना था फिल्म का नाम। और इससे पहले आज के प्रोग्राम का आगाज मैंने किया हेलो ब्रदर के एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, बाबुल सुप्रिया और जसविंदर नरूला की आवाज़ें, एंड दिस वन वॉज फ्रॉम निगाहें, नॉट नगीना। Anyway, so मुझे उम्मीद है दोनों के दोनों गीत आपने पसंद किए होंगे। मेरे साथ ही एकदम पहचान जाते हैं क्या होने वाला है प्रोग्राम में। वेल, बता दूंगी कुछ ही देर में, बता दूंगी कि क्या चल रहा है प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले ज़रा आपसे पूछ लूँ कैसे मिजाज है आपके। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इन्जॉय कर रहे हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, तो चेयर अपना हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है ना। दुख कम तो नहीं हो जाएगा अगर हम रोते रहेंगे, और अगर मुस्कुरा देंगे और दुखों को भी झेल लेंगे तो आगे सुख है। तो इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ। मेरे वो साथी जो ऑलरेडी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अपने होने का एहसास दिला रहे हैं, थैंक यू एवर सो मच। इसी तरह से अपने मैसेजेस मुझ तक पहुँचाते रहिएगा। प्रोग्राम के इस सावन में घर से तो यही सोचा था कि सावन क्यों ना, सावन पे सारे गाने, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। लेकिन आई वॉज जस्ट वेटिंग कि थोड़ी सी तो बारिश हो जाए, फिर सोचा कि ऐसे तो बारिश हो ही नहीं रही है, हो सकता है सावन के गीत लगाऊं तो बारिश हो जाए। लेकिन मिडलैंड्स में तो हो रही है, थंडरी शावर्स हैं, तो आपको तो सावन के गाने ज़रूर पसंद आएंगे। कहीं भी मिडलैंड्स में आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो ज़रा बता दीजिएगा कि ये दोनों गीत आपको कैसे लगे, और कोई गीत आपको सावन का याद आ रहा हो और चाहते हैं कि प्रोग्राम में शामिल हो जाए तो किसने मना किया है। व्हाट्सएप मैसेजेस आप भेज सकते हैं मुझे, और मेरी कोशिश रहेगी आप सब के मैसेजेस का मैं जवाब जरूर दूं। थैंक यू कि आपने हमें नंबर वन बनाया है, आपने हमारे रेडियो को और भी आगे बढ़ाया है। आपकी लिसनरशिप से हम आगे बढ़ते हैं, आपके हौसले से, आपकी हौसला अफजाई से, आपकी सपोर्ट से हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने प्रोग्रामों को पसंद किया और हमें हौसला अफजाई दी। थैंक यू, इसी तरह से सुनते रहिएगा। चलिए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर SBI UK के जरिए पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो your £1 in British sterling can get you up to 228 rupees. Depends के कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करा रहे हैं। तो आप ट्रांसफर कैसे करेंगे? यू कैन गो टू द ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए। TNC अप्लाइज।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio. This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
1: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
3: Leicester Mela is back. And this-

0: become Star Plus soon.
1: भोजपुरी बवाल।
2: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं है।
3: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो।
4: कहां सही झगड़ा चला था भाई।
1: द ब्रांड न्यू रियलिटी टीवी शो भोजपुरी बवाल, मंडे टू संडे एट 10 PM ऑन कलर्स टीवी।
0: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: What a beautiful song from the film Jurmana 1979 में आई थी ये फिल्म. लता जी की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत. मेरे बहुत से साथियों ने इस गीत की फरमाइश की है. थैंक यू एवर सो मच. आप सबके नाम मैं इन द एंड कोशिश करूँगी सबके नाम ले सकूँ, लेकिन आपके मैसेजेस मुझे बराबर मिल रहे हैं और मैं उनका जवाब भी दे रही हूँ साथ ही साथ. तो इसी तरह से मेरा साथ देते रहिएगा. और अगला गीत भी बहुत खूबसूरत है एंड ये गीत भी आपको पसंद आएगा ऐसी मैं आशा रखती हूँ. इसकी भी फरमाइश मुझ तक पहुँच चुकी है. तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं और ये गीत आप तक पहुँचा रहे हैं कोका नूडल्स वाले.
0: This is Laika Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: From the film Manzil 1979 ki film thi. Kishorda ki awaaz. Rim jim gire saawan. Aapke wahan barish ho rahi hai? Well, hamare Bharat mein to bahut barish ho.

0: Tasty Track of the Hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: अच्छा चलिए आप मुझे ये बताएं कि सावन के महीने में आप क्या किया करते थे। अपने मुल्क में तो बहुत कुछ होता है, सावन के झूले पड़ते हैं, सावन के मेले भी लगते हैं एंड सावन में बहुत से अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। आप स्पेशल सावन के महीने में इस कंट्री में बैठे, बाहर की कंट्री में बैठे क्या क्या करते हैं, अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और सावन के महीने में स्पेशली जब बादल छाए होते हैं एंड खूब तेज बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही होती है, तो बहुत से पकवान बनते हैं, जैसे पकौड़े पूड़े बनते हैं, मालपुए बनते हैं, रबड़ी बनती है। आप क्या बनाते हैं बताइए, जानना चाहेगी सरिता आप सभी से। तो चलिए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ा दें।
2: Sarita Sabharwal with your weekend classics. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
3: ये है Leica Radio।
2: One performer।
4: इनके सामने का प्रोसेस कह दे क्या पहनी है तुमने, साड़ी भैया खिलाड़ियों के खिलाड़ी।
5: Countless personalities।
6: जिंदगी बर्बाद हो गया।
2: A whole universe of entertainment।
7: नन्ना फंक्शन रखा हुआ है।
5: Sunili Grover live UK tour 2026।
2: 29th October Over Arena Wembley London। 31st October Mattioli Arena Leicester।
5: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises, experience Sunili Grover live on stage in the UK।
2: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions।
5: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
2: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
8: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy.
2: Siddhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham.
8: Siddhayu, Ayurved that fits your life.
9: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।

0: सुरेश वाडकर और अनुपमा देशपांडे की आवाजें आपने सुनी. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. सुरेश जी की आवाज बहुत मीठी है, बहुत मीठी आवाज. एंड चांदनी फिल्म से चुना था मैंने इस गीत को. शिव हरी कथा संगीत 1989 में आई थी ये फिल्म. और ये गीत हमने बड़े प्यार से मुन्नी जी के नाम किया, जो आज अपना खास दिन मना रही हैं, यानी कि अपना बर्थडे मना रही हैं. मुन्नी जी को ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी मुबारक, बहुत बहुत बधाई संध्या भावसर, हितेश जी और संध्या जी की सारी सहेलियों की तरफ से. मुन्नी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू.
1: हे देयर, मैं हूं बाली ब्रह्मट. कैच मी ऑन माय शो गोल्ड आफ्टरनून्स विद ट्रिब्यूट्स, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने ऑन लाइक अ गोल्ड एंड लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स फ्रॉम 1 PM to 4 PM.
0: थोड़ी सी ये जिंगल्स में गलती हुई, पर कोई बात नहीं, हम सुधारने की कोशिश करेंगे. आपको बता दें करेंसी का रेट मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है. इंडियन रुपीस आपको एक पाउंड के बदले मिलेंगे 128.57, पाकिस्तानी रुपी 374.77, श्रीलंकन रुपी 452.52, बांग्लादेशी टका 167.12, अफगानिस 88.76 एंड US डॉलर्स 1.34.
2: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Radio. LIKA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: अभी गोल्ड का रेट इस वक्त मार्केट में 103 pounds and 57 pence पर.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116

0: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colours TV.
1: I hope मेरे जनेरा हम लोग वक्त पर पहुँचे.
2: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का Perfect Destination. Rakhi और Ganesh Idols अब available हैं सभी Falcon Stores पर. Onam संध्या के लिए pre-bookings भी शुरू हो चुकी हैं. Falcon Snacks 300 grams की full range सिर्फ £1.99 each. Mustafa Dehraduni Rice 20 lbs सिर्फ £13.49. Suhana Khaman Thokla 500 grams सिर्फ £1.99 each या 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kgs सिर्फ £29.96. S Motiram Namkeen अब सिर्फ 99p से शुरू. और Herdsman बटर घी 20 kg सिर्फ £10.99.
3: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE5 4UN.
4: लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्ले बैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
5: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Laika Radio.
6: कुछ लोगों की कहानियाँ उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती.
7: A story of love, redemption and second chances returns to the big screen.
6: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा.
7: इमरान हाशमी is back in the much awaited sequel Awarapan 2.
6: इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा या मैं.
1: तो फिर
7: witness powerful emotions, breathtaking action and a soundtrack that stays with you long after the credits roll. Releasing in cinemas from August 14th. For your nearest cinema listings, visit Vikrania Media on Instagram.

कल्याणी मित्रा और जसपाल सिंह की आवाजें आपने सुनी फ्रॉम द फिल्म सावन को आने दो, और ये भी फरमाइश थी किसी की, थैंक यू एवर सो मच फॉर टेकिंग पार्ट एंड सीरियसली प्रोग्राम सुनते हैं। दिस इज लाइका और ये गीत हमें न्यूज तक पहुंचा देगा। ये भी तो आप ही की पसंद है।

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने और मैं आपका स्वागत करती हूँ प्रोग्राम के सेकंड आवर में. इट्स नियरली 15 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock. वेरी गुड इवनिंग टू यू. इफ यू हैव जस्ट जॉइन मी, तो आपने पहले आवर में सावन वाले गाने मिस कर दिए, पर कोई बात नहीं, सावन का महीना है. इस महीने में शायद हो सकता है अगले हफ्ते भी एक आध गाना तो जरूर शामिल करने की कोशिश रहेगी. वैसे देशराज बसंत जी, आपने ही मुझे याद दिलाया था कि सरिता सावन का महीना है तो सावन के गीत हो जाए एक दिन. तो श्योर मैं वेट कर रही थी कि भी किस दिन बारिश हो तो उस दिन मैं सावन के गाने सुनाऊंगी. तो मैंने कहा ऐसे तो पूरा महीना ही निकल जाएगा, तो क्यों ना आज ही के प्रोग्राम में शामिल कर दें. तो और भी बहुत से गीत हैं, पर कुछ गीत ऐसे थे जो हमारे यहाँ से आपने एक दो दिन पहले ही सुने, इसलिए मैं नहीं सुनवा पाई. लाइक आई रियली लाइक दैट सॉन्ग पतझड़ सावन बसंत बहार वाला गीत, एंड वो गीत भी मुझे बहुत पसंद है. लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ऐसे और भी गाने थे जो नहीं मैं प्ले कर पाई, पर जितने भी गीत शामिल किए आपकी वाहवाही तो मिली है मुझे. आपने हर गीत के बाद मुझे शाबाशी दी है और हमेशा सपोर्ट करते हैं. और सपोर्ट की बात करें तो आपने हमारी रेजर फिगर्स जान ली होंगी. हमारे यहाँ से हर रोज़ हर प्रेजेंटर आपको याद दिला रहे हैं कि आपका हम धन्यवाद करना चाहते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप बड़े प्यार से हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारा साथ देते हैं. और लाइका रेडियो नेटवर्क के सभी प्रोग्रामों को आपने बेहद दिल से पसंद किया है और हम सभी को बहुत बहुत अप्रिशिएट भी किया है. थैंक यू एवर सो मच. अगर आप ना होते तो हम भी नहीं होते. अगर आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो लाइका रेडियो नेटवर्क और भी आगे बढ़ता रहेगा. इसी तरह से अपने मैसेजेस हमेशा भेजते रहा करें. अच्छा, बैक टू बैक दो गाने आपने सुने. पहला गीत मैंने फिल्म याराना से चुना था, जो कि 1995 में आई थी फिल्म. एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था डेविड धवन साहब ने. ऋषि कपूर, माधुरी दीक्षित और राज बब्बर ने इस फिल्म में काम किया था. नु मल्लिक जी का था संगीत. और दूसरा गीत सिलसिला सुपर डुपर हिट फिल्म थी, गाने बड़े हिट थे. शिव हरी जी का संगीत था इस फिल्म में. यश राज फिल्म्स की फिल्म थी, यश चोपड़ा जी ने इसे डायरेक्ट किया था. एंड शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, रेखा और संजीव कुमार ने इस फिल्म में काम किया था. और ये पर्टिकुलर सॉन्ग जो था वो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, शशि कपूर एंड जया बच्चन पर पिक्चराइज हुआ था. क्यों, ठीक कहा सरिता ने, जल्दी से बता दीजिए.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: चलिए भाई, अगर इनके जरिए पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो आज आपको मिल सकते हैं 128 rupees. इट डिपेंड्स कि कितने पैसे आप ट्रांसफर करा रहे हैं. और एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इतने पैसे मिलेंगे आपको, 128 rupees. एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए. TNC अप्लाइज.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio.
2: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m. Start to

0: रफी साहब ने गाया था इस गीत को, रजिंदर कृष्ण जी ने लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का था संगीत और फिल्म का नाम था प्यार किए जा। कौन थे इस फिल्म के हीरो हीरोइन याद है आपको? वेल, किशोर कुमार थे, शशि कपूर थे, महमूद थे इस फिल्म में, कल्पना, राजश्री, मुमताज एंड ओम प्रकाश। मल्टी स्टारर फिल्म थी और उम्मीद करती हूँ गीत आपने पसंद किया जो आप तक पहुँचाया।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio.
0: आपको याद दिलाने जा रही हूँ कि उदित नारायण एंड आदित्य नारायण वाओ आ रहे हैं लंदन। 90s बॉलीवुड लेजेंड उदित नारायण परफॉर्म्स विद हिज सन आदित्य नारायण एट ओवो अरीना वेम्बले में ऑन संडे 20th December। टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट मास्टर एंड AXS। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर कौन है? लाइका रेडियो नेटवर्क। और इसके साथ साथ एक और खुशखबरी, कविता कृष्णमूर्ति जी आ रही हैं लाइव। यस, कविता कृष्णमूर्ति, द लेजेंड कविता कृष्णमूर्ति परफॉर्म्स लाइव एट द रॉयल एल्बर्ट हॉल ऑन संडे 1st November। ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एज ए दिवाली स्पेशल एंड टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू बॉक्स ऑफिस मिल सकती है आपको। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो नेटवर्क।
1: Get your products advertised across the largest Asian radio network. We are Leica Radio. Email sales@leicamedia.co.uk. Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio.
0: एक और सुपर डुपर हिट गाना फ्रॉम द फिल्म जंजीर, 1973 की फिल्म थी प्राण जी पर ये गाना पिक्चर है।

0: शादी है।
1: मन्ना डे साहब की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत कितना मशहूर हुआ था ये आप सभी जानते हैं। प्राण जी पर ये गाना पिक्चराइज हुआ था, फिल्म का नाम था जंजीर। राइट, आपको बता दें कि इस बारी के पॉडकास्ट का एपिसोड 28 आप तक पहुंच रहा है और उसका टॉपिक है इस एस्ट्रोलॉजी रियल और ए ट्रैप। क्या आप सोचते हैं, ये स्कैम होता है या कि रियल है? इफ हॉरोस्कोप मैचिंग इज एक्यूरेट, व्हाई डू कंपेटिबल मैरिजेस स्टिल एंड इन डिवोर्स? अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा, तो जरूर देखिएगा। और इसे होस्ट कर रही हैं खुश। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इट्स अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, तो ले लीजिएगा और देखिएगा।
2: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर, गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
3: लाइका रेडियो
4: लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्ले बैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
5: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: शंकर जयकिशन जी का संगीत था, पर आई थिंक दिस सॉन्ग वॉज रिटन बाय हसरत जयपुरी. यस, आई थिंक सो. ससुराल था फिल्म का नाम, जिसे टी प्रकाश राव जी ने बनाया था. उन्होंने डायरेक्ट की थी इस फिल्म को, एंड इस फिल्म में राजेंद्र कुमार थे और साथ में थी बी सरोजा देवी. उनके लिए इतना प्यारा सा गीत गाया राजेंद्र कुमार साहब ने, बहुत खूबसूरत गीत है. और आई थिंक कोई भी महबूब अपनी महबूबा की तारीफ करना चाहता है तो ये गाना तो सबसे पहले उसके दिमाग में ज़रूर आता होगा. क्यों, क्या कहते हैं आप? वेल, बहुत सारे मैसेजेस हैं मेरे सामने. जगतार जी, संध्या जी, संतोष फ्रॉम हैरो, हंसा जी, विमल रायन जी, महेंद्र बरजारिया जी, भारती डीडी, रानी जी इंसलाव, भारती जी दूसरी वाली भी, जैस्मिन जी, जयंत एंड मीना जी, फरीदा गुलाम अली, उल्लास फ्रॉम टोरंटो, वत्सला जी, अर्जुन जी, दिव्या हैरो से, नरेश जी, बिपिन ज्योत्सना जी, प्रतिभा जी, बहुत सारी लंबी लिस्ट है. देखते हैं कि वक्त इजाजत देता है या नहीं. पहले जरा ये काम कर ले.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Ride a pound in your pocket can get you Indian rupees 128.55, Pakistani rupees 374.77, Sri Lankan rupee 452.48, Bangladeshi taka 167.8, Afghani 88.76, Kenyan shillings 174.53 and US dollars 1.34.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on LIKA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: गोल्ड का रेट इस वक्त मार्केट में 103 pounds and 57 pence का एक ग्राम सोना.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.
1: Leica Radio. This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
3: I hope Major Nena हम लोग वक्त पर पहुंचे.
4: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू. और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg G710-99.
5: Falcon Cash and Carry 82A, Syston Street West, Leicester, LE12JU and 2A, Rollout Cell, Leicester, LE54UN.
6: Get ready, UK.
7: Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
8: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
7: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
8: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
7: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
9: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot potato shop, now at Foss Park.
6: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
10: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02030773633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
11: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
12: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
11: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
12: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
11: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
12: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
13: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।

0: मरना भी मुश्किल। रफ़ी साहब की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत मैंने फिल्म प्रोफेसर से चुना था। और देखिए ना किस तरह से जल्दी जल्दी वक्त बीत जाता है। 5 मिनट रह गए 6 बजने में और फिर 1 घंटा और है हमारी और आपकी मुलाकात का। यस, आई विल बी विद यू टिल 7 o'clock। 7 बजे आएंगे हमारे विंटेज गोल्ड लेकर सैंडी शाह, उनका भी आप साथ देंगे। नेक्स्ट आवर में कुछ ऐसे गीत शामिल रहेंगे जो फिल्में आज ही के दिन रिलीज हुई, इसलिए सुनते रहिए, साथ देते रहिए।
1: Back to back hits across the Leica Radio Network.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने. दिस सॉन्ग वॉज फ्रॉम द फिल्म चंबल की कसम और ये फिल्म आज ही के दिन रिलीज हुई थी 1980. चंबल के कसम में काम किया था राजकुमार ने, शत्रुघ्न सिन्हा थे, मौसमी चैटर्जी थी. इस फिल्म का संगीत तैयार किया था खय्याम साहब ने एंड रहा राम महेश्वरी जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. और बहुत सारे मेरे साथियों ने मैसेज भेजा है कि सरिता बहुत प्यारा गीत है, थैंक यू. एंड आज के प्रोग्राम के लास्ट आवर का पहला गाना मैंने चुना था फिल्म परदेश से. सुभाष घई साहब की फिल्म थी, उन्होंने इसे प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट किया था. इस फिल्म में थे शाहरुख खान, महिमा चौधरी, अपूर्व अग्निहोत्री, अमरीश पुरी, अलोक नाथ एंड हिमानी शिवपुरी. एंड इस फिल्म में महिमा चौधरी को लॉन्च सॉर्ट ऑफ किया गया था. एंड 8th अगस्त 1997 में ये फिल्म रिलीज हुई थी आज ही के दिन. एंड फिल्म का संगीत तैयार किया था नदीम श्रवण ने. उम्मीद करती हूँ दोनों गीत आपने पसंद किए.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, SBI UK वालों के जरिए अगर आप पैसे आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो 1 British sterling pound can get you today 128 rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNC applies.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और वे आज के प्रोग्राम में बिस्वजीत जी की फिल्म का एक बहुत प्यारा सा गीत मैंने चुना है. उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा. बहुत अच्छा गीत है फ्रॉम द फिल्म ये रात फिर ना आएगी. आप सोचते रहिए ना कौन सा गाना है, पहले जरा ये सुन लें.
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio. Leica Radio.
2: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM. One performer.
4: Countless personalities. A whole universe of entertainment.
5: Sunil Grover, live UK Tour 2026.
4: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
5: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises, experience Sunil Grover live on stage in the UK.
4: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
5: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
4: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
6: South of travel, 7 days a week. South of travel, 24 hours a day.
7: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
8: Southall Travel. Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
9: Southall Travel can take you there.
10: Southall Travel, at all protected.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
12: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
11: High appreciation.
12: In Dubai.
13: वेडिंग्स, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागस एंड सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasun.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
14: मॉम, आई डोंट नो व्हाट टू डू एनीमोर। माय हेयर इज गेटिंग वर्स। आई ट्राइड एवरीथिंग, नथिंग वर्क्स।
15: बेटा, यू आर नॉट अलोन। फॉर 5 generations आवर फैमिली ट्रस्टेड वन थिंग, प्योर हर्बल केयर, आमला, ब्रिंगराज, नीम, रियल इंग्रेडिएंट्स, नॉट केमिकल्स।
14: सो वेयर डू वी फाइंड समथिंग लाइक दैट नाउ?
15: राइट हियर इन लंदन, बैद्यनाथ सिद्धायु हेयर ऑयल, शैम्पू एंड टूथपेस्ट, प्योर आयुर्वेदिक प्रीमियम एंड मेड द वे आवर एल्डर्स यूज इट।
16: फ्रॉम द हाउस ऑफ बैद्यनाथ विद ओवर 100 ईयर्स ऑफ आयुर्वेदिक लेगेसी, सिद्धायु, नाउ अवेलेबल इन फाल्कन कैश एंड कैरी, लेस्टर एंड नॉटिंघम।

0: प्यार वो।
1: इस हफ्ते के हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक रहे बिस्वजीत जी, जिन्होंने बहुत सी शानदार फिल्मों में काम किया और उन्हीं में से मैंने इस फिल्म का गीत आप तक पहुंचाया, ये रात फिर ना आएगी, और महेंद्र कपूर साहब ने गाया था इस गीत को। आई होप यू एंजॉयड इट।
2: Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Another beautiful song, और इससे मैंने चुना था किस फिल्म से, आदमी और इंसान से. आज ही के दिन यानी 8 अगस्त 1969 में ये फिल्म रिलीज हुई थी. धर्मेंद्र जी, सायरा बानू, फिरोज खान ने इस फिल्म में काम किया था. यश चोपड़ा जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और रवि जी का था संगीत. साहिर लुधियानवी साहब ने लिखे थे इस फिल्म के सारे गीत. और उम्मीद करती हूँ मेरा चुना हुआ गीत आपने पसंद किया. वैसे इस फिल्म के बाकी के गाने भी ज़बरदस्त थे और मैंने इस गीत को कर दिया आप सभी के नाम जो बड़े प्यार से मेरा साथ दे रहे हैं और इसी तरह से चाहती हूँ साथ देते रहें टिल 7 o'clock.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: और अ ब्यूटीफुल सॉन्ग बहुत दिनों बाद सुना. फिल्म का नाम था कन्हैया और ये फिल्म 7 अगस्त 1959 में रिलीज हुई थी. नूतन और राज कपूर ने काम किया था और ओम प्रकाश ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था एंड शंकर जयकिशन का था संगीत. उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया.
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स गुडनेस इन एवरी बाइट. ट्राई इट टुडे अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, एक पाउंड के बदले आज आपको मिलेंगे इंडियन रुपीस 128.57, पाकिस्तानी रुपीस 374.77, श्रीलंकन रुपीस 452.48, बांग्लादेशी टका 167.8, अफगानी 88.76 एंड US डॉलर्स 1.34.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Gold ka rate is what market mein chal raha hai, 103 pounds and 57 pence per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116 266 4278.
2: Leica Radio.
3: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7am Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.

0: ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ ये गीत भी आपने पसंद किया जिसे मैंने चुना था मेरे हमदर्द मेरे दोस्त फिल्म से। चलो सजना जहाँ तक घटा चले, अब मेरे जाने का वक्त है और सैंडी के आने का वक्त है। सैंडी जी का आप इंतज़ार करेंगे, विंटेज गोल्ड के बाद आप हमारे नाइट सर्विस भी सुन पाएंगे। बहुत प्यारे प्यारे गीत होते हैं एंड उसके साथ साथ और भी बहुत से प्रोग्राम्स हैं। कल सुबह सुबह आ जाएंगे आपकी सेवा में दीप राजा अपना शो लेकर, फिर रितु शर्मा, फिर अनुराग और फिर सरिता की बारी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, बाय फॉर नाउ।
1: Is Leica Radio across the Midlands. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colours TV.
3: I hope Major Nena hum log waqt par pahunche.
4: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का Perfect Destination। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी Falcon Stores पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग भी शुरू हो चुकी हैं। Falcon Snacks 300 grams की फुल रेंज सिर्फ £1.99 each। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 LBS सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 grams सिर्फ £1.99 each या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ £29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99p से शुरू और हर्जमैन बटर घी 20 kg सिर्फ £10.99।
5: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE12JU and 2A Rollout Cell Leicester LE54UN.
6: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
7: Kuch logon ki कहानियाँ उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती।
8: A story of love, redemption and second chances returns to the big screen.
7: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा।
8: इमरान हाशमी is back in the much awaited sequel Awarapan 2.
7: इस बार या तो यह आवारापन खत्म होगा या मैं।
9: तो फिर
8: witness powerful emotions, breathtaking action and a soundtrack that stays with you long after the credits roll. Releasing in cinemas from August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
10: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.

0: Disha Basmati Rice, available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
2: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500 पाउंड, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
4: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
5: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavor at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favorite today. Hot potato shop now at Foss Park.
6: कुछ शामें कैलेंडर में नहीं, दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लेकर आ रही हैं एक यादगार म्यूजिकल इवनिंग लाइव इन कॉन्सर्ट। Saturday the 5th of September at the Platinum Suite Leicester. Apni seats aaj hi reserve kijiye. For more information call Mr. B on 0786

0: Biker Radio.
1: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 50th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
2: I hope Major Naina, hum log waqt par pahunche.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन.
4: It's back and it's bigger.
1: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vom Jewelers.
4: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
1: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
4: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
5: कुछ लोगों की कहानियाँ उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती.
6: A story of love, redemption and second chances returns to the big screen.
5: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा.
6: इमरान हाशमी is back in the much awaited sequel, Awarapan 2.
5: इस बार या तो यह आवारापन खत्म होगा या मैं.
6: Witness powerful emotions, breathtaking action, and a soundtrack that stays with you long after the credits roll. Releasing in cinemas from August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Vikrania Media on Instagram.
7: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं. एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है. शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स. दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स.
8: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela and survivors desperately need your help. Go to dec.org.uk to donate or text radio to 70150 to give £10. Text costs your donation plus standard network rate. Thank you.
9: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: Best Asian hits on Leica Radio.
1: अगर कोई मुझसे ये पूछे
2: क्या
1: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ,
2: क्यों
1: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है, बता दूँ क्या
2: क्या

0: ये है लाइका रेडियो।
1: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय 108 बेस हॉस्पिटल उरी। स्टार्ट्स 15th ऑफ अगस्त एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7 PM ऑन कलर्स टीवी।
2: आई होप मेजर नैना हम लोग वक्त पर पहुंचे।
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
0: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। What's your travel mantra?
5: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
6: ये है लाइका गोल्ड

0: Location, location, location.
1: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
0: Introducing Greens by Tanyo, a premium collection of townhouses and villas.
1: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
0: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
1: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
0: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
1: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
0: High appreciation.
1: In Dubai.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
3: साउथ हॉल ट्रेवल ऑटो प्रोटेक्टेड Bollywood's biggest 90s songs non-stop.